बुद मने सगा पवन की सुद मने मोचो तान काए मने चाम के साथ न जाए आसन नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन खोए मने मग तक न पाए मने पट से पगट जाए मने मग्न चले पांत मने धर्म से तीसर बंद आसन नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन खोए मने पावे मुक्त द्वार मने परवारे सदार मने तरे तारे गुरु सिख मने नानक पवे ना पिक आसन नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन खोए पंच प्रवान पंच पतान पंचे पावे तके मान पंचे सोहे तारा जान पंच कगर एक ध्यान जे को कह कर विचार कते के कण नहीं समार दौल धर्म दया का फूट संतोख था प्रकिया जन सूत जे को बुझे हो वे सचियार तबले ऊपर कित पार धरती होर परे होर हो तिस्ते पार तले कवन जो चिय चतरंग का के नाम सबना लिखिए बड़ी कलाम एहो लेका लिख जाने कोए लेका लिखिया केता होए केता तानस आले रूप खेती दा चाने कौकूत खित पसाओ एक कबाओ ठिसठे होए लक डरियाओ खुद टुट कवन का विचार वार्य न जाव एक बार जो टुट पावे साई पलिका ठूस दा सलामत निरंकार असंख जप संख पाओ संख पूजा संख थप थाओ असंख ग्रंथ मकवेत पाठ असंख जग मन रहे अदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख तातार असंख सूरमो पाक सार असंख मौन वलय था गुर रिट कवन कहा विचार वार्य न जाव एक बार जो चिट पावे साई पलिकार तूसरा सलामत निरंकार असंख मुर खंड कोर असंख छोर राम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल बड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख खुड़िया खड़े फराहे असंख मलेच मन पक खाए असंख

तितपाना जोगी जाने रुतमा हो ना कोई जाकरता सिर्टी को सजे आपे जाने सोई केव कारा का केव साला ही क्योवानी केव जाना नानक हाकन सब खुआ के एक दुए के स्याना वड़ा साये वड़ी नाए कीटर जा का होवे नानक जे को आपो जाने आगे का ना सो है पातला पताला का गास गास ओढ़क बत के वेर कहन कवात सहस तरन खिन के तेपा आसू लिखतात लेख होए ता लिखिए लेके होए बनास नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप सलाही सलाहे इति सद ना पाया नडिया आचे वा पावे समुंद न जानिया है समुंद सास तान गिर सति मलताना कीड़ी तू न होवनी जेठ समुन विसर है आंतन सिति केम न आंत आंतन करने देन न आंत आंतन वे खण सुन न आंत आंतन जापे क्यामन मंता आंतन जापे कीता अकार आंतन जापे पारवार अंत खड़न के ते बल लाहे ताके अंतन पाए जाए एहो अंत न जाने खोए बहुत खेय बहुत होए वड साए बूछ थाओ ऊचे ऊपर उछनाओ ए वड ऊचा होवे कोए ठिस ऊचे को जाने सोए जे वड आप जाने आप नानक नररी करमिदात बहुत करमल की आना जाए वड दाता तनतमाए केते मंगे चुर पार केचिया कणत नहीं विचार केते कप टूटे वे कर केते ले ले मुखर खा पाहे केतिया मूर्ख खाहे खाहे केतिया दुख भुख सरमार है बिता तरी दातार पंद कलासी बाने होए होर आक न सके खोए जे को खाए का आकन पाए ओ जाने जितिया मोहे खाए आपे जाने आपे दे आके से भी खे जिसनो बक्से सिफत सला नानक पातशाही पातशाह अमूल गुण मुल वपार मुल वपड़ी अमूल भंडार अमूल आवे अमूल ल चाहे अमूल पाए अमूल समाहे अमूल तरम अमूल दीपान अमूल ठोर अमर पवान अमूल बख्शीष अमूल निशान अमर करम अमूल फरमान अमल अमला क्या न जाए आक आक रहे लगलाए आके वेद पाठ पुराण आके पढ़े करे विख्यान वख्यान आके परमे आके इंद आके गोपी ते गोविंद आके ईश्वर आके सिद्ध आके केते कीते बुद्ध आके दानव आके देव आके सुरनन मुंजन सेव केते आके आकन पाए केते के उठ उठ जाहे एते कीते होर करे है ठाक न सके के जेवड पावे तेवड होए नानक जाने सच सोए जे को आके पुल बिगाड़ चल किया सिर गवार गवार सो दर खे हा सो कर खे हा जित बे सरब समाले वाजे नाद नेक संखा केते वावन हारे केते रग परिस्यो खयन केते कावन हारे गावे तुन पण पणि वसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावे चितल गुप लख जान है लख लख धर्म विचारे गावे ईश्वर बम देवी सोहन सदा सवारे गावे इंद दासन बेटे देवतिया जनाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन सद विचारे गावन जति सति संतो की गावे वीर करारे गावन पंडित पुरंदर ईश्वर जग जग वेदा नाले गावे है मोहनिया मन मोहन सगम च पायाले गवन तान पाए तेरे असट तीर्थ नाले गावे चर महाबल सुर कवे खणि चारे कवे खंड मंडल पर बंड ककर के तारे सही तन न गावे चुट पावन रते तेरे भगत साले होर खेते गावन से न चित न आवन नानक विचारे सोई सोई सदा सच साहेब सच सची नाई
Ebi husi jain jasi rachna jin rachai. Rangi rangi pati kaka jasi maya janapai. Kaka veka kita apna jivtisa divadiyai. Jyotisa pave soi karsi hukumna karna jai. So pata sahu saha pata sayaba nanaka rana rajai. Munda santoka sarampata joli choli. Dhyan ki kare babuta kinta kinta. Kala kuari karya jagatanda patit. Ahi panti sagajamati manjite jagajit. Ades to say ades. Ada nila nada naha jiga jiga eko ves. Pukitta gyan dhyam bandaran gat gat vaje nada apanata nati sabja ki ridsara avarasad. Sanjog vijog de karchalavehe leke ave bog. Ades to say ades. Ada nila nada naha jiga jiga eko ves.

शिक्षिका कौसा वाहेगुरु जी की फते रे रसाय सत गुरु प्रसाद हर जुग जुग भगत भाया भजना कदा आया राम राजे हर नाकश चुष्ट हर मरिया प्रहलाद तरिया अंकारिया निंदक पिटे नाम देव मुगलाया जन नानक ऐसे हर सेविया अंतर लाय चिदाया सोदार रागा समह ला पहला एक ओंकार सत गुरु प्रसाद सोदर थेहा खेहा सोगर खेहा जितबे सर्व समाले बाजे तेरे नारने के संखा खेते तेरे बावन हारे खेते तेरे राग परीसियो कहिया है खेते तेरे गावन हारे गावन थुनुनु भवन फनी वे संतर गावे राजा तरम दुआरे गावन थुनुनु छेत कुपक लिक जानन लिक लिक तरम विचारे गावन थुनुनु ईश्वर बर्मा देवी सोहन तेरे सरा सवारे गावन थुनुनु इंद्र इंद्र सन्न बैठे देवया डरनाले गावन थुनुनु सिर समाधि अंदर गावन थुनुनु सार विचारे गावन थुनुनु जति सति संतो की गावन थुनुनु वीर करारे गावन थुनुनु पंडित परन रखीशर जुग जुग वेदा नाले गावन थुनुनु मोहानिया मन मोहन सुरगम चपयाले गावन थुनुनु रतन उपाय तेरे आट सट तीरत नाले गावन थुनुनु जोद महल बल सोर गावन थुनुनु कानी चारे गावन थुनुनु खंड मंडाल बरमंद खर खर रखे दारे सेथुनु गावन ज्योतिर बावन राते तेरे पकतर साले पुर खेते थुनो गावन से मैं चेतन आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सरा सच साहिब सच सची नाय हे भी होसी जाय न जसी रच न जिन रचाय रंगी रंगी बाती कर कर जिनसी माया जिन उपाय कर कर देख कीता अपना ज्योतिष दी बरियाय ज्योतिष पावे सोई कर सी फिर हुक्म न कर न जाय सो पत शाल सहा पत साहिब हन कर हन र जाय आसम है ला पहला सुन वड़ा आखे सब कोय खे वड़ा वड़ा दीता होय कीमत पाए न कहिया जाए खीन खाने बले थरे राय समाए वाटे मेरे साहिब गहिर गंभीर गुनी गहिर कोई न जाने तेरा खेता केवल चिरा रहो सब सुरति मिल सुरत कमाए सब की मत मिल की मत पाए ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाय कहान न जाए ठेरी ठेल वडियाली वडियाई सब सत सब थप सब चंगी आया सिद्ध पुरख किया वडियाया तिन बिन सिद्धि कीने न पाया कर्म मले नाई ठाकर आया आकन वाला क्या बेचारा सिपती बरे तेरे भंडारा जिस तू दे तिसे किया चारा नानक सच सिरवन हारा आसम है ला पहला आका जीवा विसरे मर जाओ आकन ओक सच्चा ना सच एक नाम की लागे भूख ऊट भुखे खाए चलिया है दुख सो क्यो विसरे मेरी माए सच साहिब सच नाय रहा सचे नाम की तिल वटियाई आख टके की मत नाही पाए जे सब मिलके आख न पाए वड़ा न होवे गाट न जाए ना ओ मेरे न होवे सोग दे डर है न चोके पोग गुने हो ना ही कोई ना को हो ना को होए जे वड़ आप थे वड़ तेरी दात जिन दिन करके की ती रात खसम विसरे थे कम जात नानक नावे बाज सुनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सत गुरु सत पुरख बिनो करो गुरु पास हम किरे किरम सत गुरु सरनाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरुदेव मोखो राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाही हर किरत हमरी रे रास रहा हर जन के वड भागव डेरे जिन हर हर सरद हर प्यास हर हर नाम मिले त्रिपथा सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया थे बगहीन जाम पास जो सतगुरु सरन संगत नाही आए त्रिग जिवे त्रिग जिवास जिन हर जन सतगुरु संगत पाही थिन तुर मस्तक लिखी अलकास दान दान सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चितावे उदम जा हर हर जियो भारिया सेल पतार में जंत उपाये थाके रजक आगे कर दरिया
मेरे मदाल जी सत संगत मिले सो थारिया गुरु प्रसाद परम पद पाया सुखे कसत हारिया रहा जन न पित लोक सुत पनित कोई न किस की तारिया सिर सिर रचक संभाहे ठाकुर खाहे मन भाव खरिया ओडे ओड आवे से खोसा जिस पचे बचरे चरिया तिन खावन खलावे खावन चुकावे मन में सिमरन कारिया सबन दान दस अस्त सिदान ठाकुर कर ताल दारिया जन नानक बल बल सद बल जाहिया तेरा अंतन परवारिया राग असमहला चौथा सो पुरक एक ओंकार सिद्ध गुरु प्रसाद सो पुरक निरंजन हर पुरक निरंजन हर गम गम अपार सब दियाव है तुर जी हर सचे सिर गृणहारा सब जी तुम्हारे जी तुन जी हक का तर तारा हर दियाव हो संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक की जी किया नानक चंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते भिखारी जी सब तेरे छोट बटाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हो तुर बिन अपन न जानना तू भर ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे किया गुण आक बिखाना जो सेव है तुर जी जन नानक तिन करवाना हर दियाव है तुर जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त बाहे जिन हर दियाया जी तिन टूटी जमखी फासी जिन हर निर्वो दियाया जी तिन का बो सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से दान जिन हर दियाया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी बरे बियंत बियंता तेरी भगत सलाहन थुर जी हर नेक नेक नंता तेरी नेक खर है हर पूजा जी जाप थाप थपे जापे दयांता तेरी अनेक फरे बहु समृत शास्त्र जी खर खिरिया खट कर्म करंता से भगत बले जन नानक जी जो बावे मेरे हर भगवंता तुर आर पर का प्रम्भर करता जी तुर जेवर अवरण कोई तुन जुग जुग एको सद सर थुन एको जी थुन निचल करता सोही तुर आपे बावे सोही वरते जी थुन आपे कर सोही तुर आपे शिष्ट सब उपाहे जी तुर आपे सर सब कोही जन नानक गुण गावे थे खटते के जी जो सबसे खा जनोही असमहला चौथा तुन करता सजियार मेडा साही जो तू बावे सुई थी सी जो तुन दे सुई हो पाई रहा सब तेरी तुन सबनी दियाया जिसनो कृपा करे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मरमुख गवाया तुर आप बिछोड़िया आप मलाया तुम दरियो सब तुर ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाही जी जंत सब तेरा केलव जोग मिल बिछोड़िया संजोगी मेला जिसनो तू जनिया है सोही जन जान है हर गुण सत ही आक बखान है जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुर बिन दूजा अवर न कोहे तू खर खर विख है जान है सोए जन नानक गुरमुख परगट होए असमहला पहला तित सर्वरे बहिले निवास पानी भगत ने किया पंखाजमो भागनाई छाले हम देखे थे डुबियाले मन एक नचेतस मोर मना हर बिसरत थेरे गुण गालिया रहा ना हो जति सती ना ही फरिया मोरक मुगत जानम बाया प्रणवत नानक थिनकी सड़ना जिन तू नाई विसारिया असमहला पंजवान बाहे परपात मानक देहोरिया गोबन मिलान की ए थारी बारिया अवर खाज थेरे कीते न काम मिल सत संगत बाज केवल नाम सरन जम लाग बव जल धर न के जन्म मृत जत रंग माया के

स्मरत शास्त्र वेद सबै बहु वेद कहे हम एक न जानियो सिरिया सपान कृपा तुम्हारी कर भेन कहो सब तोय बिखानियो तोरा सगल द्वार को छाड़ के गेहो द्वार द्वार बाहे कहे की लाज आस गोविंद दास द्वार राम खाली मला ती जानंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद अनंद बया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरु था पाया सहज से ती मानव जिया बताया राग रतम पर भार पारिया शब्द का वनी आया शब्दोत का वो हरि केरा मन जनी बसाया काहे नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसरना अंगीकारो कारे तेरा कारज सब सवारना सब नागला समरात स्वामी सुखियो मन हो सारे काहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहिबा क्या नहीं कर तेरे गरता तेरे सब किच है जिस ते सो पावे सदा सिफ सला तेरी नाम मानव सावे नाम जिन कै मन वसिया बाजे शबद गनेरे काहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे सचिन धाम मेरा अदारो सच नाम धार मेरा जिन भूख सब गवाया कर शांत सुख मन हाय वसिया जिन इच सब पुचाया सदा कुर्बान कीता गुरु भिट हो जिस दिया हेट फटियाया काहे नानक सुन हो संतो शब्द रूपी आरो सचिन धाम मेरा अदारो बाजे पंच शब्द तित कार सुभागे शब्द बाजे काला जित कर तारिया पंच तुत तुत वास कीते काल कंतक मारिया तुर खर्म पाया तुर जिन को से धाम हार के लागे काहे नानक थे सुख हुआ तित करान हत फाजे बुद्धावरी महला पांचवान थल विच तिन वस तू भाई हो सत संतो

जिते तू समरहता जिते कोई नाहे ओते तेरी राखा करी उधर माहे सुन के जम के दूत नाए तेरे छाट जाए बोझल बिकमा सका हो कर शब्दी पार पाए जिनको लागी प्यास अमृत से के ही कल महे एहो पुन गुण गोविंद गाहे सबसे नो कृपाल समाले साहे साहे बिरत कोई न चाहे जेवरा जेवा तुर जे आवे तुर आहे श्लोक महला पंजवान अंतर गुर राधना जीवा जाप गुरु नाव नेत्री सदगुरु फेकना सर्वानी सुनना गुरु नाव सतगुरु सेती रातिया दरगा पाया ताओ काहुं नानक कृपा करे जिसनो ए वत दे जग महे उत्तम खडाया है विरले खे खे है महला पंजवा राके राकनहा रापुबा